0: के मुतद सजाएं काट रहे हैं, जिनके बारे में इसराइल का कहना है इनमें दर्जनों इसराइली हलाक और जख्मी हुए थे। बिन कवी ने इस्लामा से कहा कि मैं तुम्हें सजाए मौत देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा इस बात को यकीनी बनाएंगे फलस्तीनी कैदियों को सजाए मौत का सामना करना पड़े, जबकि वो नामनहाद रजाकाराना हिजरत को भी फ़रोग देंगे, जिसका मकसद फलस्तीनियों को गजा मकबूजा बगरी किनारे से बाहर निकालना है।
1: गजा में 2 साल से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली बमबारी के बाद जदीद तारीख की अजीम तरीन सफाई की कार्रवाइयाँ जारी हैं। गजा में जमा होने वाला 61 मिलियन टन मलबा इमदादी टीमों और मकामी आबादी के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। अक़वामे मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक गजा में मलबे की कुल मकदार गुज़श्ता 18 सालों में दुनिया भर में होने वाली तमाम जंगों से होने वाली तबाही से तकरीबन 20 गुना ज़्यादा है। अक़वामे मुत्तहिदा और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की टीमें मलबे में से अपना रास्ता बनाने के लिए शदीद गर्मी, महदूद आलात और तबाह शुदा इंफ्रास्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ नबर्द आजमा हैं। माहरीन ने पेशगोई की है कि गजा के तमाम तर मलबे को हटाने में 7 से 10 साल लग सकते हैं और इस पर अरबों डॉलर लागत आएगी। न सिर्फ फिजिकल हालात की वजह से बल्कि जानलेवा खतरात की वजह से भी काम बहुत सुस्त रफ्तारी से जारी है। अगरचे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन 10,000 लाशें अब भी मलबे के नीचे हैं, ना फटने वाले गोला बारूद और जहरीले मादे सफाई के इलाकों में एक बड़ा ख़तरा भी है। इसराइली हुकाम की तरफ से सामान और स्पेयर पार्ट्स के दाखिले पर आए पाबंदियों के बावजूद टीमें सड़कों को साफ करने और इंसानी इमदाद के गुजरने की इजाज़त देने के लिए स्क्रैप कंक्रीट को तोड़कर रीसाइकिल कर रही है।
0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। इलाके हुकाम ने ऐलान किया है यूक्रेन के दाखों में केव को निशाना बनाने रूसी ड्रोन हमलों में कम से कम 3 अफराद हलाक और 10 से ज्यादा जख्मी हो गए, जबकि मास्को ने मुल्क भर में वसी फजाई जारी शुरू कर दी है। केव के इलाके प्रोसिक्यूटर ऑफिस के मुताबिक हमला सूफी वस्का बोश शाहुका नामिकों के मकामी बाजार पर हुआ, जबकि दीगर ड्रोन हमलों से सिविलियन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दहाकुमत के इलाके में तजारती गोदामों दफ्तरी इमारतों में शदीद आग भड़क उठी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इंकशाफ किया है कि रूसी फौज ने हफ्ते के रोज से अब तक मुख्तलिफ मॉडल्स के 270 हमलावर ड्रोन दागे हैं, जिससे मुल्क भर में सिविलियन बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक ऐसी इमारत भी शामिल जो सऊदी अरब के सफीर की सरकारी रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल होती थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करता एक बयान में ज़ेलेंस्की ने कहा कि इसमें ड्रोन हमलों की इस लहर ने किंडरगार्टन, स्कूलों, रिहायशी मकानों, कार्टियों की मरम्मत की दुकानों और मुसलत इंतजाम के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है। लावा से मजीद हमले दनपोरों में एक स्पोर्ट्स स्कूल और सोमी के इलाके में बच्चों के यतीम खाने पर भी किए गए। ज़ेलेंस्की ने कहा ऐसा करने के पीछे रूस का कोई फौजी मकसद नहीं, खालिस्तन लोगों के हौसले तोड़ने हमारे माशरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने मास्को की जांच हाल में की जाने सफारती पेशकशों को मुस्तरद करते हुए दलील दी ये सिर्फ फैसला कुन बैन अवी इकदाम को रोकने के लिए तैयार की गई हैं।
1: पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा रादस्लाव सिकोर्स्की का कहना है कि जब तक उसकी फ़ौज यूक्रेन में मसरूफ़ है, रूस के पास नेटो पर किसी बड़े हमले की गुंजाइश नहीं है। सरकारी नशरियाती इदारे TVP इन्फो से बात करते हुए सिकोर्स्की ने अपने गुज़िश्ता हफ्ते के इसी इंतबाह की वजाहत की कि वारसो के पास मुदाता ज़राए से मालूमात हैं, जिनसे ज़ाहिर होता है कि रूस इस साल कोई बड़ी मनसूबाबंदी कर रहा है। मास्को के मंसूबे किस शक्ल के हो सकते हैं, सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह सिर्फ पुतिन ही जानता है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए और हमें होशियार भी रहना चाहिए ताकि एक इत्तेहाद के तौर पर हम किसी भी इश्तियाल अंगेजी का फौरी तौर पर जवाब दे सकें। उन्होंने कहा कि रूस के पास नेटो पर बड़े हमले के लिए फोर्सेज नहीं है, क्योंकि उसकी तमाम अफवाज यूक्रेन में जकड़ी हुई हैं। सिकोर्स्की ने इशारा किया कि मास्को मुमकिन तौर पर छोटे पैमाने पर कुछ कर सकता है, जिससे इत्तेहादियों के दरमियान तनाज़ा पैदा हो। सिक्योरिटी ने मजीद कहा कि कोई ऐसा वाकया जो यूरोपीय और अमरीकी अरकान को इस बात पर तकसीम कर दे कि आया नेटो के आर्टिकल 5 की मुश्तरका दिफाई शिक लागू होती है या नहीं, क्रेमलिन के मफाद में होगा। मुमकिन है कि रूस जो कुछ वो पहले से कर रहा है उसे मजीद जारहाना अंदाज में करे। मगरबी हुकूमतों ने मास्को पर इल्ज़ाम लगाया है कि वह नेटो और यूरोपीय यूनियन के ममालिक के खिलाफ हाइब्रिड जंग के एक हिस्से के तौर पर तबाहकारी और फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जियों पर मबनी मुहिम चला रहा है।
0: हुकाम ने बताया भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में कई रोज की मूसलाधार बारिश और सैलाब के बाद कम से कम 62 अफराद हलाक हो गए। रियासती हुकूमत ने पीर को कहा 3 रोज की शदीद बारिशों से कई अजला जेरे आब आ गए, जिसके नतीजे में 46 अफराद जख्मी हुए और 1,000 से ज्यादा मकाना को नुकसान पहुंचा। रियासती हुकूमत लखनऊ समेत बाज़ इलाकों में पीर को स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि रेस्क्यू टीमों ने सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकाम पर

0: असल सरमाया कभी खर्च नहीं किया जाता था, बल्कि सिर्फ असल सरमाए से हासिल होने वाले मुनाफे के जरिए सैकड़ों सालों तक खिदमत का सिलसिला जारी रखा जाता था। सामिन, आज हमने बरकत के एक ऐसे दौरी चक्कर का, ऐसे फनी मगर शफकत भरे निज़ाम का मुशाहिदा किया है जहाँ पैसा रहम व हमदर्दी में तब्दील हो जाता था। वक्फ की तहजीब सिर्फ इंसान के माल ही को नहीं, बल्कि इसके वक्त, हत्ता कि इसकी आखिरी ख्वाहिश को भी नेकी के एक पुल में तब्दील कर देती थी। आप भी रहमदिली और नेकी के साथ रहिए। याद रखिए, जब एक हाथ आगे बढ़ता है तो एक ज़िंदगी बदल जाती है और कहानी मुकम्मल हो जाती है। देने वाले हाथ की कहानी में अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात की उम्मीद के साथ अपनी मेज़बान मिसबा शाहिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: देने वाले हाथ की कहानी।

सामिन, क्या वक्त और जगह के बारे में आपका तस्वुर कभी बदला है? क्या कोई चीज़ आपको मानूस और अजनबी मालूम हुई? क्या आपने कभी महसूस किया कि आप माजी में थे, हालांकि आप जानते थे कि आप हाल ही में रह रहे हैं? ये एक शाम आप पर किसी दूसरे मुल्क की रोशनियाँ जगमगा उठी। क्या आप कभी सड़क पर चलते हुए घर के किचन या लॉन्ग रूम के नीचे से गुजरे हैं? हो सकता है कि यह सब किसी फिल्म के मंजर की तरह लगे, लेकिन अनातोलिया में एक शहर है जो आपको मुख्तलिफ औकात और मकामात पर ले जाता है।